0: और इस समय आप आ चुके हैं हमारे दूसरे घंटे में। दूसरे घंटे में मस्ती और भी मैड होती चली जा रही है और खबरें आती चली जा रही हैं देश विदेश से। चलिए फिर से चेन्नई चलते हैं। चेन्नई या शारजा पता नहीं।
1: Setting the perfect hot temperature.
2: I think this is one of the shows जिसके actually में कोई boundaries नहीं है. It's just not India. I think हम किसी भी continent और किसी भी मतलब एक पल में कहीं पर भी पहुंच सकते हैं और कहीं की भी खबर आ सकती है,
0: क्योंकि mad खबरें और mad लोग दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं।
2: अनप्रदर
0: Alright, let's talk about this खबर। और ये mad से मतलब ये है कि they are totally different खबरें, they're not the usual खबरें, right? So एक 34 साल का passenger, 34-year-old passenger, उसने फटाफट से emergency exit खोला plane में और tarmac पे jump मार दिया in a slow moving taxiing Air Arabia flight जो कि land हुई at Chennai International Airport मई के महीने में इसी साल में।
2: okay.
0: तो शारजा से चेन्नई जा रही थी ये वाली और 200 passengers type थे। shortly after touchdown अभी मतलब land ही हुआ था प्लेन, अभी तो टैक्सी हो रहा था, धीरे धीरे अभी रुकने वाला था, अभी तो इस बंदे ने क्या किया, इमरजेंसी डोर खोल दिया और कूद भी गया। अब मतलब हाँ, तो नो वार्निंग नथिंग। सो द क्रू ने रिपोर्ट किया कि भाई जो ये पैसेंजर था ही वॉज फीलिंग वेरी अनवेल एंड नॉशिएटेड एंड ही हैड कंप्लेंड ऑफ वॉमिटिंग एंड ऑल दैट सेंसेशन एंड उसने दो बार कर भी दिया था ऑन बोर्ड। तो पायलट ने तो एकदम से एयरक्राफ्ट को जोर से झटका मार के रोक दिया एंड जो ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी वाला फोर्स पर्सनल होते हैं उन्होंने भाग के उस पैसेंजर को टैक्सी वे पे पकड़ लिया। थोड़ी बहुत चोटें आई हुई थी उसको लेकिन इतना कुछ खास नहीं था। उसके बाद पुलिस को हैंडओवर किया गया फॉर ऑब्वियसली ब्रीचिंग द एविएशन सेफ्टी नॉर्म्स, राइट। लेकिन मतलब क्या हो गया भाई, क्या हो गया?
2: हाँ बट वॉशरूम क्यों नहीं गया ये, मतलब टैक्सी के टाइम वांटेड टू
0: अलाउड नहीं है ना उस टाइम पर, अभी तो फ्लाइट जब लैंड और टेक ऑफ के टाइम अलाउड नहीं है, तो अपनी सीट से बच गए करके भागा। मतलब बताओ, हे डार्लिंग्स प्लीज रुक जाओ, पहुंच गए थे
2: या प्लीज
0: प्लीज प्लीज।
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक, जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: Whoa, 101 ways why we all also love the Gen Zs. I'll give you one more.
0: They make Friday mornings the Saba.
2: Gen Z एक अलग प्रकार की वस्तु होती है जो कि रोज ही नए नए रंग दिखाती है और हमको हैरान कर देती है. Good morning, Masti Madness. Anantra, क्या खबर लाई हो?
1: इतना कूल लगा ना मेरे को. तो क्या हुआ कि ये जो एक Gen Z employee, ठीक है, 3 दिन लेट जो है आ रहा था, तो HR ने इसको 30 दिन का सस्पेंशन दे दिया कि तू 3 दिन से लेट आ रहा है, 30 दिन का सस्पेंशन पकड़ और निकल यहाँ से. ना तू हमें कांटेक्ट करेगा, ना तेरे मैनेजर से तू कांटेक्ट करेगा, कोई काम नहीं करेगा,
2: बिल्कुल
1: चले वहां से. तो अब यूजुअली क्या है कि मतलब जब ऐसी चीजें होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, फिर जाकर यू नो कि अरे अरे अरे ये क्या हो गया मेरे साथ. Gen Z ने कहा कि बहुत बढ़िया, तो मेरे पास 30 दिन है ना, ये निकल गए छुट्टी पे.
2: हाँ.
1: 30 दिन उसको दे दिया, ये भाई निकल गए छुट्टी में. तो हुआ कुछ ऐसा, 10 दिन बाद HR शॉर्ट स्टाफ हो गया. इसने कॉल किया कि इसको करता हूँ, बैठ के कहीं रो ही रहा होगा कि भाई हमें सस्पेंड कर दिया, तो उन्होंने कहा अभी शॉर्ट स्टाफ है तो तू आ जा. वो कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट, यू ओनली, मैं तो तुम्हारा ही प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूँ, तुमने कहा था किसी से कॉन्टेक्ट मत करना, मैं अभी छुट्टी पे, मैं तो बीच पे बैठा हूँ, मैं नहीं आ सकता.
2: अरे कहा ना, ब्लैक एंड व्हाइट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट लाइफ इज विद Gen Z. ब्लैक एंड व्हाइट, नो शेड्स ऑफ ग्रे. मतलब इट्स ओके ना, तुमने कहा छुट्टी पे जाओ, चले गए.
1: उसने कहा तुमने ये थोड़ी ना बोला था कि तुम्हें मुझे मेरे सस्पेंशन के साथ करना क्या है. यू डिड नॉट टेल मी एनीथिंग अबाउट इट, इट इज ऑन मी, राइट. तो मेरे पास टाइम था, मैंने कहा गया आई कैन नॉट कम, यू सी अब तुम्हें क्या करना है, मैं 30 दिन बाद आई विल कम एंड रिपोर्ट एज यू हैड मेंशन्ड बिफोर.
2: योर प्रॉब्लम इफ यू आर शॉर्ट स्टाफ, मैंने सोचना था.

0: खाओ।
1: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे wholesome healthy options.
2: GG Mart, your personal grocer.

0: ऑलराइट रेडियो मस्ती 24/7 पर। भाई बर्थडे होता है तो बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है कि बस मेरा बर्थडे है तो सारी दुनिया सेलिब्रेट करे, राइट? बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं, मतलब क्यों लोग दुखी बैठे हैं, मेरा बर्थडे है, मैं पैदा हुआ हूँ, मतलब कमाल है कि नहीं।
1: Setting the perfect hot temperature for Friday.
0: तो अंतरा तुम्हें कैसा लगता है, जिस दिन तुम्हारा बर्थडे होता है तुम्हें लगता नहीं यार ये लोग दुखी क्यों बैठे हैं, आफ्टर ऑल मैं पैदा हुई हूँ, खुश रहो।
2: यहाँ पर दूसरों का बता दी, मैं तो बहुत खुश होती हूँ अपने बर्थडे वाले दिन, और मैं बहुत खुशी खुशी इधर उधर घूम रही होती हूँ, और मुझे बहुत फन आता है, लाइक आई एम स्पेशली 2 points हायर हैप्पी ऑन दैट डे।
0: या एग्जैक्टली। सो एक 33-year-old ऑटोमोबाइल डीलर मुंबई में, भाई वो बड़ा एक्साइटेड था कि उसका बर्थडे है, तो उसने क्या किया, ही पोर्ड सम पेट्रोल ऑन द रोड एंड ही सेट इट ऑन फायर टू क्रिएट अ सोशल मीडिया रील फॉर अ बर्थडे। उसने कहा कैंडल कुंडल क्या जलानी, मैं पूरी पूरी आग ही लगा दूंगा रोड पे, ठीक है। अब पुलिस जो है उन्होंने उसको बुक किया अंडर द प्रोविजंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ये जो इंसिडेंट है इसको पुलिस को ऑब्वियसली नोटिस पे लाया गया थ्रू अ ट्वीट व्हिच वाज मेड ऑनलाइन बाय जर्नलिस्ट लेट ऑन अप्रैल 25 दिस ईयर। उन्होंने टैग किया मुंबई पुलिस को और कहा ये देखो बर्थडे मन रहा तुम्हारे राज में यहाँ पर, ठीक है, 12:05 हो रहे हैं राम मंदिर रोड गोरेगांव वेस्ट में, मतलब बर्थडे मन रहा है बाय पेट्रोल आग लगा के कि भाई केक क्या जलाना, कैंडल के जलाना, हम तो पूरा मतलब रोड ही जला डालेंगे क्योंकि हम पैदा हुए हैं। फिर जाके भाई को पकड़ा उन्होंने कि मतलब चल क्या रहा भाई, इतनी भी कौन सी खुशी होगी तेरी।
2: हाँ जब मैं खुशी वाली बात ऐड करी थी मैं ये भूल गई थी कि आजकल तो वायरल का जमाना है, लोगों को लगता है कि और कुछ ना हो ना हो हमें कुछ ऐसा करना, भाई पब्लिक प्रॉपर्टी है वो, और वैसे भी ये कौन सा मतलब हुआ। माना तुम खुश हो लेकिन खुशी जाहिर करने के नॉर्मल और सेन तरीके भी होते हैं।
0: बिल्कुल, इसीलिए तो ये अगला का नारा है गोट। गोट,
2: यस डेफिनेटली।
3: What's up, dog? Shit, bro, this tune in the wind. What's good with it? Watch out, man. Watch out, Dilg coming, man.
4: Oh, word. They say he the GOAT. He all the way tapped in.
3: Yeah, dog. He killing the game.
4: Oh, Dilg, watch out.

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique, showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: क्या आप जादू में बिलीव करते हो? जादू जादू
0: देमिक फ्राइडे मॉर्निंग.
2: मुझे तो जादू का सिर्फ वो ही याद है, धूप.
3: ट्रस्ट मी, इस जादू को धूप की जरूरत नहीं है.
2: लाइक दैट. बताओ बताओ.
3: आई थिंक बहुत ही फॉर गुड रीजंस जादू, लाइक मैजिक ऑल्सो हैज इवॉल्व्ड एंड हाउ. एंड इस जादू का नाम है सुहानी शाह,
2: who's going
3: to be here live in Singapore, and I'm so so excited about it. कि because एक होता है कि उसके जो वीडियोज है देखना, जो ऑलरेडी इतने अनबिलीवेबल से होते हैं कि भाई इसने कैसे कर लिया ब्रो, लाइक हाउ, आई रियली वांट टू नो. बट देन द अदर थिंग इज वॉचिंग दैट थिंग अनफोल्डिंग राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड हैपनिंग लाइव. इट इज जस्ट क्रेजी, इनसेन. इट इज सच अ कूल थिंग, नॉट ओनली आई थिंक फॉर एडल्ट्स, फॉर द किड्स ऑल्सो टू वॉच.
2: वेरी ट्रू,
3: वेरी स्मार्ट. कैसे किया?
2: मुझे एक्चुअली अंतरा कल एक किसी ने फोन किया जिन्होंने टिकट्स खरीदी हैं फॉर सुहानी शाह, एंड शी कॉल मी एंड शी सेज हे आर यू गोइंग टू बी देयर. आई सेड ऑफ कोर्स आई वोंट मिस दिस फॉर द वर्ल्ड, यू नो. शी सेज यू नो व्हाट, सुहानी शाह का जो ये है मैं इसलिए देखना चाहती हूँ, और मैंने एकदम से टिकट सबसे आगे की लिए बिकॉज मेरे को देखना ये सच है क्या. इतने इसके वीडियोज देखे मैंने, वो कैसे पता लगा लेती है यार दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है. सो आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व हर. सो वेल, इफ यू आर अ सुहानी शाह फैन, फैंटास्टिक. इफ यू लव मैजिक, और भी फैंटास्टिक. इफ यू have children who you want to show the amazing world of mentalists, to fir to bahut hi badhiya. Lekin agar aap Suhani Shah ko challenge karna chahte hain ki sab jhoot hai, hum pakad lenge, to bhi jaiye is wale show ke liye. Hamara jo special code hai usko use karenge aap, to aapko of course market se better price milega tickets ke. Bahut hi kam tickets reh gayi hain is samay, and this is on the 20th. Ji bilkul 20th ko ho raha hai ye show, sham ko. Yes, so आपको जाना ही चाहिए. मेरे ख्याल से दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड आई डोंट थिंक सुहानी शाह इज गोइंग टू बी बैक फॉर मेनी मेनी इयर्स. सो डेफिनेटली सिस्टिक पर जाइए इस टाइम पर, या हमें लिख दीजिए 9151896 3. विल गिव यू दैट स्पेशल लिंक टू बाय टिकट्स फ्रॉम, जिसके साथ आप मतलब बेटर प्राइस पे बिल्कुल खरीद सकते हैं. राइट अंतरा?
3: एंड ऑफ कोर्स हम तो जाना तो है ही और देखना तो है ही. जो खुजली उन आंटी को है वो खुजली मुझे भी है कि मैं भी नोटिस ऑब्जर्व करना चाहती हूँ.
2: बिल्कुल, सुहानी शाह स्पेल बाउंड, डू नॉट मिस.

0: गए।
1: भाई हो चुका है, हमारा मन भर चुका है, ऐसी हरकतें ना की जाए वापस से, क्योंकि हम और कुछ मतलब वापस से हम घर के अंदर बंद नहीं होना चाहते। प्लीज।

0: फ्राइडे मॉर्निंग्स द सोफा।
1: तुम कोविड टाइप की बात कर रही हो? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं, नॉट अगेन ऑन
2: रेडियो 24/7।
1: बिल्कुल नहीं, बस कर दो, बस कर दो ऐसी घिनौनी हरकतें।
2: भाई बात इसलिए मेरे दिल में यूं आई क्योंकि ये जो बंदा है, ठीक है, इसने पकड़ा हुआ है एक डिस्पोजेबल वाला ग्लास, ठीक है। अब वो ग्लास के अंदर पानी है कि क्या है पता नहीं, बट देयर इज सम वाटर, बट इन दैट वाटर देयर इज अ लाइव फ्रॉग आल्सो, एंड स्ट्रॉ लगा के भाई हमारा जो है वो लाइव फ्रॉग डाले हुए उसको पी रहा है।
1: क्यों कर रहा है ऐसे, क्या मिल जाएगा
2: भाई? भाई भाई, सो बेसिकली ही इज क्लेमिंग इट लाइक वो उससे हेल्थ बेनिफिट्स ऑफर होते हैं, बट डॉक्टर्स जो है उन्होंने वार्न किया है कि भाई ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इंफेक्शंस व्हिच दे मेंशनड एंड द डेंजरस पैरासाइट्स एसोसिएटेड विद कंज्यूमिंग रॉ एंड इम्प्रॉपरली हैंडल्ड फ्रॉग्स, कि भाई मत कर, इवन फॉर वायरल रीजंस मत कर। नीचे कॉमेंट्स तो और भी ज्यादा कहते भाई हर चीज खाने की नहीं होती, कुछ छोड़ दे, कुछ छोड़ दे।
1: नहीं पर बात सही है, हम हमेशा कहते हैं कि साफ पानी पियो, राइट? साफ पानी का मतलब है अगर वो ऑलरेडी वो जो फ्रॉग है उसमें वो कूद कूद के उसमें सूसू भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो साफ नहीं रहा ना, उसको पीने दो वो वाला पानी, तुम तो ढंग का पियो। वायरल होने के लिए कुछ भी करेंगे। उफ, रेडियो मस्ती 24/7, मिलते हैं आपको अगले घंटे, ठीक है? तब तक आप सोचिए क्या ये सही था
2: फ्रॉग वाला पानी। ची ची ची।
3: ओए हौली हौली

0: और हमारे तीसरे घंटे में शुरुआत होती है 29 साल के एग्जीक्यूटिव रोहित लाल की मौत की खबर के साथ में। गुड मॉर्निंग, ये है मस्ती मैडनेस।
1: Setting the perfect hot temperature for Friday.
2: सनसनी खेज खबर लाती हुई हमारी रेणुका।
0: मुझे तो ये नहीं समझ आता, ये जितने लोग मरते हैं ना ऐसे ऐसे सेक्स एनहांसिंग ड्रग्स खाके, ये मस्ती मैडनेस क्यों नहीं सुनते? क्योंकि अगर ये मस्ती मैडनेस का ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव शो सुनते तो इनके साथ कभी ऐसा नहीं होता। तुम जानती हो मैं क्या कह रही हूँ। 29 साल का ये एग्जीक्यूटिव जिसका नाम है रोहित लाल, वो मर गया गुरुग्राम के अपार्टमेंट में क्योंकि ओवरडोज हो गई थी सेक्स एनहांसिंग ड्रग्स की। जिससे पहले कि उसकी फियोंसे आने वाली थी, उसको अपने पे विश्वास नहीं था कि वो सब कुछ अपने आप कर पाएगा, तो उसने बहुत सारी ऐसी दवाइयां खा ली और वो ओवरडोज हो गया। उसने कहा आज तो मैं सारी दुनिया हिला के रख दूंगा। तो वेल ऑब्वियसली जो ये रोहित लाल है उसका कोवर्कर गॉट रियली वरिड जब उसने कोई फोन कॉल नहीं आंसर करे, अपना दरवाजा नहीं खोला फॉर द डेली कम्यूट ये वो। सो फिर उसने अथॉरिटीज को बताया, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और देखा कि भाई ये तो हिल नहीं रहा है बेड पे। तो जाके उन्होंने देखा एम्प्टी रैपर्स ऑफ मेडिसिन हेल्थ सप्लीमेंट्स नियर द बॉडी और लगा पुलिस को शक हुआ कि भाई ने तो सेक्स एनहांसिंग ड्रग्स खाई है, प्रॉबेबली ओवरडोज हो गया जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया है। फिर उसके बाद वाकई वो बात सच हो गई। अब फियांसे का क्या हुआ इसकी कोई खबर नहीं है, वो खुश होके गई नहीं होके गई, कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, इन सब की कोई फिलहाल मेरे पास खबर नहीं है। बट वेल वी कैन टॉक अबाउट इट द वे वी आर, बट गाइस डोंट, राइट अंतरा?
2: या मतलब इस चीज का भी परफॉर्मेंस प्रेशर कब से, मतलब ये चीजें चलती हुई आ रही है, लाइक सीरियसली आई मीन आपकी हेल्थ ज्यादा जरूरी है कि अब ये तो मतलब बहुत ही एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। योर हेल्थ कम्स फर्स्ट। आपकी हेल्थ सही रहेगी तो ही तो कुछ करने के लिए आप रहोगे।
0: बिल्कुल है ना? और कोई भी आपकी पार्टनर अगर इस बेसिस पे आपके साथ रहे या नहीं रहे डिसीजन लेगी तो फिर वो तो और भी गलत बात है। हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
1: It's a must-be partner event.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: मतलब कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं, सबके मनोरंजन के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाएगा।
3: Setting the perfect hot.
4: ये तो तुम मस्ती मीडिया 24/7 की बात कर रही हो, मुझे ऐसा लगा, ऐसा मुझे क्यों लगा अंतरा कि तुम हमारी ही बात कर रही हो। मतलब हमें खुद को इतना बेचने की कोई जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि हम बच्चे बूढ़े और जवान सबका ख्याल रखते हैं, देश विदेश।
2: I knew that she will come with this, but then I really wanted to tell her before, like, ki khabar kya pehle ye to sun lo.
4: Batao, batao, tum bhi batao.
2: तो ये वियतनाम में एक ऐसा इन्होंने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, ठीक है। नाउ दिस रेस्टोरेंट इज ऑफरिंग लाइक बच्चे बूढ़े और जवान हर किसी के लिए कुछ ना कुछ टू ऑफर। सो इट्स लाइक बड़ी सी जगह लेकर, ठीक है, सारे टेबल चेयर्स लगे हुए हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग परफॉर्मेंसेस चल रही है। एक लड़की खड़ी हुई है एक जगह पे, लाइक काफी कम कपड़े पहने हुए, शी इज डूइंग हर बेली डांस एंड एवरीथिंग। फिर कैमरा जूम करता है दूसरी तरफ एक बहुत ही हॉट सा लड़का खड़ा हुआ है, वो अपनी तरीके के डांसेस एंड मूव्स कर रहा है वहां पे, केटरिंग ऑब्वियसली द वुमेन एंड द गर्ल्स। फिर घूमता है तो वहां पे डोरेमोन का वो एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ एक बंदा वो वहां पे अपने बच्चों को जो है सारा अट्रैक्ट करने के लिए कर रहा है। देयर इज ऑल्सो क्या बोलते हैं उसको, लेडी बॉय बोलते हैं, मतलब बेसिकली उस वाले डिपार्टमेंट को भी उन्होंने कवर कर रखा है जो उधर परफॉर्मेंस कर रखा है। एक मसूस चला रखा है साथ में कि वो आके आपके कंधे और जिनको चाहिए कंधे और ये सारी चीजें जो है वो अपना साइड। डूड दिस रेस्टोरेंट हैज लाइक हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, तुम बस अंदर आओ उसके बाद तुम जा, जो मनोरंजन चाहिए सब मिलेगा तुमको यही,
4: मतलब किसी तरीके से आ जाओ हमारे पास, हम जान नहीं देंगे, सिर्फ वन वे रास्ता होगा, हर तरह की एंटरटेनमेंट मिलेगी यहाँ पर, बस खाना कैसा है मैं ये सोच रही हूँ। वो कहते हैं ना कई बार कि भगवान मुझे पास करा दे, भगवान मेरे नंबर ला दे, भगवान ये कर दे, भगवान तो भगवान एंड में कहता है पढ़ाई करी है कि नहीं करी, मतलब बेसिक चीजें, खाना अच्छा है कि नहीं है, बाकी तो सब ठीक है।

0: भाई कई बार हम भला करने निकलते हैं और फिर हमारे साथ बुरा हो जाता है, ऐसी भी जिंदगी है, कलयुग है भाई साहब, कलयुग है।
1: किस किस बात को सुन सुन के हम यही बोलेंगे। आई मीन आई थिंक वी हैव गॉन वे पास्ट कलयुग विद द काइंड ऑफ टॉपिक्स एंड थिंग्स वी हैव हर्ड, मस्ती मैडनेस में, आपको नहीं लगता?
0: सही बात है, पर मुझे बहुत दुख हुआ इस औरत पे। तो बेसिकली एक स्ट्रे डॉग, ठीक है, गली का एक कुत्ता जो कि वहाँ घूम रहा था एक पुणे में सड़क पर, और एक कैब ड्राइवर जो उसको मतलब ऊपर से ही वाज जस्ट अबाउट टू रन ओवर हिम। ओके, सो दिस वुमन एंड अनदर गाय ऑन द रोड स्टॉप द कैब ड्राइवर एंड उसकी क्लास लगा रहे हैं कि तू कैसे, तू कुत्ते को देख क्यों नहीं रहा है, तू ऐसे कैसे उसके ऊपर से, यू नो, हाउ कैन यू स्केयर द पुअर डॉग। तो वो जो स्ट्रे डॉग है वो भाई भाग कर आया एंड वो कैब ड्राइवर बोल रहा है कि भाई वो अचानक से आ गया, मेरी गलती नहीं है, मैंने तो ब्रेक लगा दी ना, मतलब अब मैं क्या करता जो मैं कर सकता था, बट ये औरत चीखे चली जा रही है और वो कुत्ता बेचारा साइड पर खड़ा हुआ है और वो कैब ड्राइवर सुन रहा है और एक और आदमी जो बीच में आ गया वो भी उस पे चीख रहा है कैब ड्राइवर पे। सडनली उस कुत्ते ने ना इधर देखा ना उधर, उसी औरत को काट लिया, उसी औरत को जो उसके लिए लड़ रही थी। हाँ, तो लोगों ने साइड पे खड़े होके तमाशा बनाया, बोला इंस्टेंट कर्मा है, तुम एक तो ड्राइवर को हरास कर रहे हो, वो उसने ब्रेक लगा दी थी, ऐसा तो नहीं है कि वो उसके ऊपर से चला गया, वो अचानक से कुत्ता भाग कर आ गया तो वो भी क्या करता। एंड दूसरा, तुम वो कुत्ते को इतना ज्यादा तुमने स्ट्रेस आउट कर दिया चीख चीख के कि उसने तुम्हें काट लिया उसके। Now the woman was confused. यार ये अच्छा है, मैं तेरे लिए लड़ रही हूँ और तू या मुझे काट गया।
1: The thing is, अब वो उससे मतलब लड़े भी तो किससे जाके लड़े, लाइक वापस कुत्ते को तो बोल नहीं सकती ना कि भाई मैं तो तेरी साइड थी।
0: बताओ, अब कुत्ते को नहीं समझ आया, कुत्ता इरिटेट हो गया, उसने कहा मेरे को रोड क्रॉस करने दो यार, रोक के एक तो मतलब कैब को रोक लिया मुझे। मे बी ही वॉज अ कुत्ता हु जस्ट डिडंट लाइक एनी सेंटर ऑफ, यू नो, टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, ही डिडंट लाइक इट।
1: ओह माय गॉड,
0: सो डोंट डू इट। आस्क द कुत्ता नेक्स्ट टाइम बिफोर यू स्टार्ट फाइटिंग फॉर हिम, आस्क हिम
1: रियली।

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
2: You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism, and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: हमें ये लगता है मस्ती मैडनेस करते हुए कि ये सारी अतरंगी चीजें अभी अभी ऐसी जो है कुछ सालों में हुई होंगी. ना ना ना, 1977 में भी ऐसी अतरंगी चीजें होती थी.
8: हुई है 70s में, 80s में, 90s में, हर टाइम पर कोई ना कोई अतरंगी वस्तु पैदा हुई है. बिल्कुल.
9: Setting the perfect hot temperature.
8: भाई ऐसा है कि टेम्परेचर काफी हॉट है यहाँ पर. और रेडियो मस्ती 24/7 पर आप सुन रहे हैं मस्ती मैडनेस विद रेणुका अनंतारा.
7: एंड्रेस टैंडर की कहानी बताती हूँ. 1977 में ये जो हमारे साउथ अफ्रीकन पुलिस ऑफिसर, ठीक है, बड़ी ही इनकी यूनिक से डबल लाइफ ये जी रहे थे. ये अपने लंच ब्रेक में, मतलब है तो वो पुलिस वाला ही, ठीक है, बट लंच ब्रेक में ये जाके बैंक रॉबरी करते थे, ठीक है. और वापस आकर इन्हीं केसेस में खुद की रॉबरी का ही खुद ही इन्वेस्टिगेशन केस में अपने आप को डाल लेते थे और उसी का इन्वेस्टिगेटर पुलिस ऑफिसर बन जाते थे. एंड इट इज नॉट दैट की मतलब अकेडमी के क्लास में ये पीछे आए होंगे या कुछ ऐसे. नो, ही यूज्ड टू टॉप हिज पुलिस एकेडमी क्लास. एंड अपेरेंटली दिस गाय स्टैंडर बिकेम वन ऑफ साउथ अफ्रीका'स मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल्स. बहुत सारे बैंक्स जो है इन्होंने रॉब किए. बिफोर 1980s में इसको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन वहां पे कहानी खत्म नहीं हुई. ही लेटर एस्केप्ड द प्रिजन एंड दो और लोगों को लेकर भागा. एंड देन ही फॉर्म्ड सम इनफेमस गैंग कॉल्ड स्टैंडर गैंग.
8: क्या बात है. मतलब एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आई, लंच टाइम होता थोड़ी देर का, उसमें जाके कोई बंदा बैंक कैसे लूट आता है. इतना आसान. रुक, अरे बाबा रुक. कहाँ गया था लंच पे? हाँ, मैं जरा बैंक लूटने गया था, थोड़ी देर लगी. हाँ, आज वाला थोड़ा हेक्टिक हो गया, थोड़ा पौना घंटा लग गया, आधे घंटे में नॉर्मली मैं कर लेता हूँ. मतलब व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस?
7: या इट्स जस्ट इनसेन, राइट? मस्ती मैडनेस. और मेरे का इसकी जगह बनती है, ही नीड्स अ स्पेस हियर.
8: बिल्कुल. मुझे लगता है कि अब ना हमें अवार्ड्स देने चाहिए मस्ती मैडनेस के अवार्ड्स, क्योंकि जो जितना ज्यादा अजीब हरकतें करे उसी को उतना ऊपर हमको बिठाना चाहिए, राइट ऑन अ पेडेस्टल. आई टेल यू, कमाल की दुनिया. हम यहाँ पर ये शो ही कर रहे हैं 10 साल से, सिर्फ बताए जा रहे हैं. कब हम भी कुछ करेंगे? चल आज लंच टाइम पे कुछ ट्राई करें.
7: ऑफर.

0: ऑलराइट एंड देखते ही देखते टाइम आ चुका है एक और मस्ती मैडनेस को खत्म करने का, बट नॉट विदाउट टेलिंग यू गाइस कि कल का दिन नहीं परसों का दिन 20th, जी हाँ 20th को डेफिनेटली सुहानी शाह आपको जाना ही है. अगर आपको चाहिए टिकट्स विच इज स्टार्टिंग $59 ओनली, तो आप हमको लिख सकते हैं इस समय हमारे 9151893 पर, जहां से हम आपको वो लिंक भेजेंगे टिकट्स बुक करने का, जो कि आपको yes. सिर्फ और सिर्फ $59 में मिल जाएगा. आई टेल यू, आप खुद जाए ना जाए, यू मस्ट रियली रियली रियली टेक योर किड्स टू वॉच दिस अमेजिंग मेंटलिस्ट. नहीं तो सिस्टिक पे जाओ, अपने आप टिकट्स खरीद लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. 6 बजे 20 तारीख को क्रेटा आयर,
1: पीपल्स थिएटर.
0: जी तो क्या प्लान है तुम्हारा अंतरा वीकेंड का?
1: आपने बता ही दिया प्लान, तो आपने सबको यहाँ पर ऑन एयर ही बता दिया. देखो जानना तो है ही, क्यूरियोसिटी मेरी पीक पे है, जानना है कैसे होता है. और अगर नहीं भी जान पाई, आई एम रेडी टू बी स्पेल बाउंड.
0: ये हुई ना बात, बिल्कुल सही सही जवाब. तो बस हम जाएंगे सुहानी शाह स्पेल बाउंड देखने के लिए. किस तरह से वो आपके दिमाग में घुस के बता सकती है कि आप क्या सोच रहे हैं, ओ माई गॉड. बट ऐसा कुछ नहीं, घबराने की बात नहीं है, वो कोई आपका घर बार नहीं बता देगी. अगर आपने कोई चोरियां चकारियां करी है उसको नहीं पता लगेगा, वो बातें नहीं पता लगती उसको, जस्ट लेटिंग यू नो. जो नहीं सोचोगे वो नहीं पता लगेगी. ऑलराइट, ऑन दैट नोट गाइस, हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड. एंड अंतरा जी, अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? मैं सीरियसली जा रही हूँ, मुझे जाना है.
1: जाओ, कौन रोक पाया है, कौन ही रोक पाया है जाने वाले को. जाओ,
0: अरे सुन, मंडे का शो कर देना प्लीज.
1: मैं टीना
0: मंडे सुबह द मॉर्निंग शो करने के लिए आएगी अंतरा आपके पास, द मॉर्निंग शो.
1: आप देख रहे हो जनता, जनता कुछ कह दी क्यों नहीं, देख रहे हो क्या चल रहा है यहाँ पे.
0: जनता क्या कहेगी, मैं जा रही हूँ ना अपनी लैम्बोर्गिनी.
2: लैम्बोर्गिनी को माई जाने,
0: बाय.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty. Only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
3: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Shaam ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
2: Healthy khao, protein khao.
3: Healthy munching ka perfect partner, aap sirf ek click door.
4: GG.
3: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
4: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: सम शोज डोंट जस्ट प्ले, दे स्टे विद यू, एंड व्हेन आवर लिसनर्स आस्क फॉर मोर वी ब्रिंग देम बैक। एनकोर शोज बाय पॉपुलर डिमांड, रिलिव द म्यूजिक, द मोमेंट्स, द मैजिक। Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for encore show timings.
6: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.

0: भाई कोट बड़ी पेंदी हुंदी जे, फिर ना क्यों दस्या नहीं, ते मुड़ के जे कितने मेरे वांगू फड़े गए ना, ते फिर कहंदे फिरोगे सॉरी अंकल सॉरी, मैं तो ट्यूशन बारे पूछना आया सी।
1: Welcome to your chill zone. Musty Music Cafe. Only music, only musty.

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
3: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: किसकी याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना।
1: रात अकेली है।
0: रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
2: कभी मेरे साथ कोई रात गुजार।
3: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique, showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
5: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: नमस्कार आदाब इन अ वेरी वार्म हेलो सिंगापुर। मैं हूं आपके साथ रेडियो मजी 24/7 लाइव और आपका हमदम आपका साथी। नाम है मेरा समर और एक बार फिर से हाजिर हूं साउथ ईस्ट एशिया के एकमात्र और सिंगापुर के ऑफकोर्स एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो रेडियो मस्ती के साथ लेकर लेजेंड्स फिर से। नाम मेरा है समर, पहचान गए होंगे आप। तो शुरू करते हैं आज का इशू। सिंगापुर फिल्में कई तरह की होती हैं, जैसे सोशल ड्रामा, क्राइम ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा, लेकिन इन सब के बाद कुछ खास तरह की फिल्में बनना शुरू हुई जिन्हें रोम कॉम ड्रामा कहा गया, मतलब रोमांस के साथ कॉमेडी का तड़का जिसमें था। लेकिन इसमें एक चीज और आप जोड़ सकते हैं, म्यूजिक, यानी रोम कॉम म्यूजिकली हिट फिल्में। और इस स्टाइल को इजाद किया था उस डायरेक्टर ने जिनकी बात आज हम अपने शो में करने वाले हैं। और ये कौन है, इनका नाम लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने हमें बहुत सी कमाल की फिल्में दी हैं, जैसे तुम सा नहीं देखा, पेइंग गेस्ट, हम किसी से कम नहीं। जी अगर आप पहचान गए हैं, फिल्में देखते हैं, तो आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ नासिर हुसैन साहब की।

0: मेरा दे।
1: नासिर हुसैन साहब उन चंद डायरेक्टर्स में से एक है और मुझे लगता है कि कोई इनके अलावा एक या दो ही डायरेक्टर्स ऐसे होंगे जिनकी फोटो फिल्म के पोस्टर में एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ होती थी। ये रुतबा था नासिर साहब का, एक अलग ही पहचान थी नासिर साहब की और उनकी फिल्मों की। म्यूजिक लवर नासिर साहब की फिल्मों का म्यूजिक भी लाजवाब होता था। तो सिंगापुर आज हम नासिर साहब की फिल्मी कहानी आपको सुनाएंगे, मतलब उन्होंने कौन कौन सी फिल्में बनाई, फिल्मों की बातें करेंगे और जैसे कि मैंने कहा कि उनकी फिल्में म्यूजिकली हिट होती थी, तो आइए म्यूजिक से शुरू करते हैं आज का ये शो। आप सुनते रहेगा लेजेंड्स फिर से समर के साथ, नासिर हुसैन स्पेशल रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक लेजेंड्स, फिर से मैं आप आज सुन रहे हैं डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर नासिर हुसैन साहब की कहानी समर की जुबानी। नासिर साहब का जन्म हुआ था 3 फरवरी 1931 को यूपी में। हालांकि ये एक बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनकी दादी मौलाना आजाद साहब, जो आजादी के बाद इंडिया के मिनिस्टर बने, एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनकी सिस्टर थी। लेकिन इनके पिताजी टीचर थे। अब टीचर थे तो ज्यादा पैसा नहीं कमाते थे। अब आप समझ सकते हैं कि मैं किस जमाने की बात करूं, जब मिनिस्टर्स के रिश्तेदार भी गरीब हो सकते थे। लखनऊ के पास एक छोटी सी जगह है शाहपुर, यहाँ इनके पिताजी पढ़ाया करते थे। इनकी वालिदा यानी मदर भोपाल से थी, तो इनकी फैमिली भोपाल ही शिफ्ट हो गई। भोपाल में एक स्कूल था जो अब भी है, अलेक्जेंडर स्कूल। इसमें इनके पिताजी पढ़ाने लग गए, तो फिर नासिर साहब ने भी स्कूलिंग यहीं से की। इसके बाद ये कॉलेज करने लखनऊ चले गए, तो लिखने का शौक इन्हें कॉलेज में ही लगा साहब। कॉलेज के दिनों में ही ये प्ले लिखने लग गए। एक कहानी भी लिखी इन्होंने जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था। और फिर इसी कहानी को लेकर कई सालों बाद इन्होंने एक फिल्म भी बनाई, लेकिन इस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे और कॉलेज के दिनों की भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। गाने इतने इंटरेस्टिंग है, इतने बढ़िया है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। आइए पहले गाने सुन लेते हैं। आप सुनते रहेगा रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से समर के साथ। आज नासिर हुसैन साहब की बहुत ही म्यूजिकल कहानी आप सुनेंगे मेरी जुबानी।

0: एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हाँ हाँ छोड़ दो आजकल, जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा?

0: गप्पों वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: डोंट मिस एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन हेल्दी स्नैक्स एंड क्रशेबल प्रीमियम नट्स एट वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर कियोस्क नंबर 12, 11th टू 25th सितंबर। शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: क्रशेबल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

रेडियो मस्ती पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ। ब्रेक से पहले मैंने बात की कॉलेज की। किसके कॉलेज की? नासिर हुसैन साहब की, जो आज के हमारे लेजेंड हैं। तो कॉलेज के दिनों में काफी सारे प्लेज नासिर हुसैन साहब ने लिखे और फिर कहानियां भी लिखी। लेकिन नासिर साहब सोचते थे कि ये कहानी पढ़ने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन इस कहानी को अगर विजुलाइज किया जाए तो कितनी अच्छी लगेगी। तो यानी नासिर साहब को कॉलेज के दिनों से ही फिल्में बनाने का एक शौक लग गया था, चस्का लग गया था यूं कहेंगे। बहरहाल जैसे ही कॉलेज पूरा हुआ, इनका कंप्लीट हुआ, तो इन्होंने घर वालों से कहा कि भाई मुझे तो फिल्में बनानी है, तो मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। अब इनके घर वाले थे पुराने ख्यालों के, मतलब फिल्मों के सख्त खिलाफ थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, फिल्में विल्में नहीं करनी है तुम्हें, यहीं रहो और कोई काम कर लो, कोई जाने की जरूरत नहीं कहीं पर, कोई नौकरी मिल जाएगी यहाँ पर। लेकिन साहब नासिर साहब कहाँ मानने वाले थे, तो साहब बात एक जगह जाकर अटक गई। न घर वाले मान रहे थे, ना नासिर साहब। तो घर वालों ने सोचा कि मौलाना आजाद साहब के पास ले जाया जाए ना, जो एक बहुत ही मकबूल नेता है, उनकी बात को ये टाल ही नहीं सकता, ये मान जाएगा। तो साहब लेके गए, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। घर परिवार वालों ने सोचा था कि मौलाना साहब इन्हें समझाएंगे, तो मौलाना साहब के पास पहुंचे और ये कहा कि देखिए साहब, ये फिल्मों में जाना चाहता है, इसे आप समझाइए कि ये ऐसा ना करे, नहीं तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। ये सुनकर मौलाना साहब बोले, तो क्या खराबी है फिल्मों में? अगर ये फिल्मों में जाना चाहता है तो जाने दो भाई, इंसान कोई भी काम करे लेकिन बस अच्छा करना चाहिए, तो अगर ये जाना चाहता है तो जाने दो। ये सुनकर घर वालों को तो आग लग गई उल्टा। अरे भाई, हम तो उन्हें यहाँ लेकर आए थे इस उम्मीद से कि मौलाना साहब उन्हें समझाएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। होता ही है सिंगापुर के, जब भी हम किसी के पास जाते हैं कोई राय लेने, तो उसे हम तब तक सही समझते हैं जब तक वो राय हमारे फेवर में ना हो जाए। जैसे ही सामने वाला इंसान कुछ ऐसी राय देता है जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो वो भी हमें अच्छा नहीं लगता। बहरहाल ये भी सब परिवार घर आ गए, लेकिन फिर आगे क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। तब तक आप सुनिए नासिर साहब की फिल्मों के ये जबरदस्त गाने। समर के साथ हैं आप रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। और कुछ कहना चाहें, अपनी पसंद के गाने सुनना चाहें नासिर साहब की फिल्मों से रिलेटेड, तो हमें हमारे फेसबुक पेज पर आकर जरूर बताएं।

नमस्कार आदाब, एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं हूँ समर और आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से रेडियो मस्ती पर। यह सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009। और आज हम अपने शो पर बात कर रहे हैं मशहूर डायरेक्टर मशहूर प्रोड्यूसर नासिर हुसैन साहब की। और ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि जब नासिर साहब की फैमिली मौलाना आजाद साहब के घर होकर वापस आई, उन्हें समझाने ले गए थे वहाँ पर, तो सभी घर वालों ने उन्हें फिर से समझाया कि देखो भाई, जो वहाँ हुआ वो हुआ, अब तुम सुन लो, तुम फिल्मों में काम नहीं करोगे, तुम यही कोई नौकरी ढूंढ लो, बस कह दिया हमने। लेकिन साहब नासिर साहब तो जिद्दी थे, कहां मानने वाले थे। तो अल्टीमेटली उन्होंने अपना सामान बांधा और आ पहुंचे मुंबई। यहां उनकी खाला रहती थी, यानी उनकी मौसी, तो वो उनके घर मुंबई में कुछ दिन रुके। लेकिन अब खाला के घर भी कितने दिन रुक सकते थे। तो हुआ क्या कि उनके स्ट्रगल के दौरान जब वो मुंबई में रहते थे खाला के घर, तो उनके कुछ दोस्त बन गए थे, तो उन्होंने खाला का घर खाली किया और अपने दोस्तों के साथ शिफ्ट हो गए और उन्हीं के साथ रहने लग गए। और फिर वो एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर एआर कारदार साहब के असिस्टेंट बन गए। कुछ साल यहाँ पर रहे, फिर किसी ने बताया कि मुंबई का सबसे बड़ा स्टूडियो फिल्मिस्तान तो उस वक्त था, तो उसमें डायरेक्टर एस मुखर्जी साहब हैं और उन्हें कुछ नए राइटर्स की जरूरत है, तो तुम ऐसा करो वहां जाओ, अपना कुछ लिखा हुआ उन्हें दिखाओ, हो सकता है तुम्हें वहां काम मिल जाए। भाई किसी ने कहा तो वो चल पड़े। बहरहाल वहां पहुंचे और अल्टीमेटली मुखर्जी साहब को इनकी राइटिंग अच्छी लगी और इन्होंने इन्हें अपने ग्रुप में रख लिया। अनारकली नासिर साहब की पहली फिल्म मानी जाती है एज अ स्टोरी राइटर, लेकिन सच ये नहीं। अनारकली का जिक्र मैं बाद में करूंगा, पहले ये जानना जरूरी है कि पहली फिल्म कौन सी थी जो उन्होंने लिखी थी। एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था चांदनी रात। अब हुआ यूं कि इस फिल्म के डायलॉग राइटर की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, तो एस मुखर्जी साहब ने कहा कि नासिर तुम डायलॉग लिख सकते हो क्या, एक फिल्म है चांदनी रात। तो साहब ये तो तैयार हो गए, क्योंकि इन्हें तो जमाने को दिखाना था अपना टैलेंट। और इस तरह एज अ राइटर इन्होंने पहली फिल्म लिखी चांदनी रात। हालांकि फिल्म में इन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया। वेल, नासिर साहब की नींव का ये पहला पत्थर लग चुका था इंडस्ट्री में और अब इस पर एक बहुत ही कामयाब इमारत तामीर होने वाली थी। चलिए उनके किस्से में आपको सुनाता रहूंगा। लेकिन मैंने जैसे कहा था कि नासिर साहब को ना बेस्ट डायरेक्टर के साथ साथ म्यूजिक का कमाल का सेंस था, तो उनके इस कमाल के सेंस को आप भी महसूस कीजिए इन गानों के साथ। ये उन्हीं की फिल्मों से हम लेकर आए आपके लिए। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहें शो के बारे में, तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर हमें जरूर कहिएगा, हमें अच्छा लगेगा। मैं मिलता हूँ इन गानों के बाद आपसे।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: Healthy खाओ, protein खाओ. Healthy खाओ, protein खाओ.
2: Don't miss exciting offers on healthy snacks and crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग.
1: Healthy खाओ, protein खाओ. Healthy खाओ, protein खाओ.
2: Healthy munching का perfect partner. आप सिर्फ एक क्लिक दूर.
3: जीजी.
2: Crushable nuts only on GGMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे wholesome healthy options.
3: GGMart, your personal grocer.
4: Saturday night का plan? Party? Concert? या फिर भजन बैठक? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर. भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची. गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक. 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
5: It's a Masti Partner event.
6: दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है. No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009, दैट इज रेडियो मसी 24/7 लाइव और लेजेंड्स, फिर से हमारे शो का नाम, जैसे कि मैंने कहा। और आज हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर नासिर हुसैन साहब की बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक से पहले कह रहा था कि नासिर साहब को अच्छे म्यूजिक सेंस वाला डायरेक्टर भी माना जाता है। इसके पीछे की बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप मान जाएंगे, बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर्स हुए हैं जो आर डी बर्मन साहब के पास जाकर ये कहा करते थे कि अरे यार, नासिर की फिल्म में तुमने जो ट्यून्स बनाई है ना, अब सारी ट्यून्स तो उसने ली नहीं होंगी, तो अब जो बची हुई है जिनको नासिर साहब ने यूज नहीं किया, तुम वही दे दो, नई मत बनाओ, हम उनमें से कुछ छांट लेंगे। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह का सेंस था और लोगों का कितना भरोसा था नासिर साहब पर, उनके म्यूजिक सेंस पर। और यही टैलेंट एस मुखर्जी साहब को भी नजर आ गया था, तो उन्होंने नासिर साहब से कहा कि भाई, तुम मेरी फिल्मों की म्यूजिक सेटिंग में भी बैठा करो। बहरहाल, चांदनी रात में ये डायलॉग्स लिख चुके थे, लेकिन पहली फिल्म जिसकी पूरी स्टोरी इन्होंने लिखी वो थी अनारकली। ये फिल्म बहुत

प्रदीप कुमार और बीना रॉय इसमें लीड रोल में थे। सुपरहिट रही ये फिल्म, नासिर साहब की पहली ही फिल्म, और इसके बाद फिल्मिस्तान ने इन्हें एक बढ़िया राइटर मान लिया। इसके बाद एस मुखर्जी साहब के छोटे भाई सुबोध मुखर्जी एक फिल्म बना रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म का नाम था मुनीम जी। इस फिल्म के जो हीरो थे उनकी इमेज इस फिल्म से पहले अलग थी और इसके बाद कुछ अलग ही हो गई, और फिर इसी इमेज के साथ उन्होंने हिंदी फिल्मों में राज किया। लेकिन इस फिल्म और इस हीरो और नासिर साहब की हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर, एक बार फिर से आपसे मुखातिब हूँ मैं समर। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से और आज हम बात कर रहे हैं किसकी? यस, नासिर हुसैन साहब की। तो मैं आपसे ब्रेक से पहले बात कर रहा था फिल्म मुनीम जी के बारे में। सिंगापुर इस फिल्म के हीरो थे देवानंद, और इस फिल्म से पहले देव साहब की इमेज एक सीधे साधे इंसान की थी जो समाज के लिए लड़ता है। लेकिन इस फिल्म के बाद देव साहब की इमेज बिल्कुल चेंज हो गई। इसके बाद उन्हें एक बेहद ही रोमांटिक एक्टर के रूप में लोग जानने लग गए जो लड़की को छेड़ता है, लेकिन स्टैंडर्ड है उसका, ऐसे नहीं है, हाँ, लोफर नहीं है, गाने गाता है। तो यूं कह सकते हैं कि देव साहब जो एक रोमांटिक स्टाइल के लिए जाने जाते थे, इसके पीछे नासिर साहब का बहुत बड़ा हाथ था। तो अनारकली के बाद नासिर साहब ने लिखी मुनीम जी, जो एक जबरदस्त हिट फिल्म रही। और गाने की तो क्या बात करें साहब, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, ये गाना बहुत ही हिट हुआ जिसे किशोर कुमार साहब ने गाया था। नासिर साहब के म्यूजिक सेंस को लेकर एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक बार एस डी बर्मन साहब फिल्मिस्तान की एक फिल्म का म्यूजिक दे रहे थे, तो मुखर्जी साहब ने कहा कि नासिर तुम बर्मन साहब के साथ जाओ और ट्यून सुनना जाके। तो साहब ये घर आ गए बर्मन साहब के। पहले तो बर्मन साहब ने इन्हें खाना खिलाया, फिर कलकत्ता से रसगुल्ले भी आए थे, तो कहा कि भाई रसगुल्ला भी आया है कोलकाता से, तुमको ये भी खाना पड़ेगा। इसके बाद बर्मन दा ट्यून बनाने लगे। फिर दो तीन ट्यून बनाने के बाद नासिर साहब को उन्होंने सुनाई तो इन्हें पसंद नहीं आई, लेकिन ये कुछ बोले नहीं। सोचे कि सीनियर हैं, पता नहीं कुछ बोलूंगा तो नाराज ना हो जाए, इन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। लेकिन बर्मनदा ने कहा तुम सच्ची सच्ची बोलो, कैसी लगी ये ट्यून तुम्हें? तो नासिर साहब बोले दादा मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ये सुन के दादा को बहुत गुस्सा आया और दादा ने सोचा कि एक तो मैंने इसे इतना बढ़िया खाना खिलाया और ऊपर से ये मेरी ही ट्यून को बुरी बता रहा है। तो बहरहाल ये तो एक किस्सा था, लेकिन इससे पता चलता है कि नासिर साहब म्यूजिक को लेकर कितने स्ट्रिक्ट थे। पहले अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और नासिर साहब की इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आप सुनते रहिए रेडियो 24/7 लाइव। मैं हूं समर आपके साथ।

0: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir? Bhajan Baithak? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
4: It's a Musti Partner event.
0: Some stories are easy to tell. Par kuch kahaniyan dil ke andar hi reh jaati hain. एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर। इन बेहतरीन गानों के बाद एक बार फिर से कुछ बातें हो जाए नासिर साहब की, क्योंकि आज हम नासिर हुसैन साहब की बातें कर रहे हैं लेजेंड्स फिर से। मैं हूं समर आपके साथ। अब तक साहब मैंने जो आपको कहानी सुनाई है उसमें वो दो हिट फिल्में लिख चुके थे, हालांकि तीन लिखी थी, एक बिराज बहु नाम की फिल्म भी लिखी थी उन्होंने, लेकिन वो इतनी बड़ी हिट नहीं रही। और वैसे भी वो कहते ना कि काम तो अच्छा ही याद रहता है। तो साहब इसके बाद 1957 में इनकी वो फिल्म आई जिसे इन्होंने लिखा, इसमें स्क्रीन प्ले भी इनका था और डायलॉग्स भी इन्हीं के थे, यानी ये कंप्लीट नासिर हुसैन साहब की फिल्म थी राइटिंग में। वही फिल्मिस्तान का प्रोडक्शन था, सुबोध मुखर्जी का डायरेक्शन और एस डी बर्मन साहब का म्यूजिक, और एक बार फिर देवानंद। और फिल्म थी बेइंग गेस्ट, सुपर डुपर से भी ऊपर हिट हो गई है फिल्म। तो म्यूजिक तो कमाल ही था साहब इस फिल्म का।
2: छोड़ दो बात,

0: जमाना क्या कहेगा।
1: पहली बार इसमें नूतन के साथ नजर आए देव साहब। गजब का रोमांस किया इसमें देव साहब ने, और इस फिल्म के बाद तो ये रोमांटिक एक्टर मान ही लिए

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: डोंट मिस एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन हेल्दी स्नैक्स एंड क्रशेबल प्रीमियम नट्स एट वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर कियोस्क नंबर 12, 11th टू 25th सितंबर। शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
5: जीजी
4: क्रशेबल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पंपकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
5: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
6: योर पासपोर्ट टू द वर्ल्ड एवरी मंडे मॉर्निंग फ्रॉम ग्लोबल हेडलाइंस टू अ पिंच ऑफ बॉलीवुड स्पाइस।
7: द मॉर्निंग शो विद रेणुका 7 AM मंडेज
8: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
9: चेक

0: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
1: एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल, स्वागत लेजेंड्स फिर से। आप सुन रहे हैं सिंगापुर और ये है रेडियो मसी 24/7 लाइव सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009। और आज मैं नासिर हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ। नासिर साहब ने अपना करियर फिल्मिस्तान में ही शुरू किया था और सुबोध मुखर्जी की कई फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की। इसके बाद नासिर हुसैन साहब ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया जिसमें सिर्फ कामयाब फिल्में ही उन्होंने बनाई और साथ ही सुबोध मुखर्जी भी बड़े फिल्म मेकर बन गए थे और दोनों की दोस्ती हमेशा चली। इन दोनों की फिल्मों में एक कॉमन चीज होती थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सुनेंगे तो आपको भी मजा आ जाएगा। नासिर साहब की फिल्म में एक कैरेक्टर, चाहे वो एक मिनट के लिए क्यों ना आए, उसका नाम होता था सुबोध मुखर्जी। और सुबोध मुखर्जी की फिल्मों में कैरेक्टर का नाम, चाहे वो एक मिनट के लिए आए, उसका नाम होता था नासिर हुसैन। आपको कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा। बहरहाल हम बात करने वाले थे इनकी पहली फिल्म की जो इन्होंने डायरेक्ट की, जिसमें शम्मी कपूर लीड रोल में थे और अमिता उनकी हीरोइन थी। और ये फिल्म थी

नासिर हुसैन साहब ने देखा जाए तो कई एक्टर्स को स्टार नहीं सुपरस्टार बनाया है, जिनमें से शम्मी कपूर भी एक थे। क्योंकि इससे पहले शम्मी कपूर की लगातार 8 फिल्में फ्लॉप हो गई थी और इनसे पहले देव आनंद साहब की इमेज भी इन्होंने ही बदली थी। और भी कई स्टार्स हैं जिनके नाम मैं आपको आगे गिनाऊंगा। तो बहरहाल तुमसा नहीं देखा बहुत बड़ी कामयाब हो गई फिल्म, और इसके बाद शम्मी कपूर साहब के साथ ही एक और हिट

ये फिल्म भी सुपर हिट। तुमसा नहीं देखा मैं ओपी नैयर साहब का म्यूजिक और इसमें उषा खन्ना का, और म्यूजिक तो बेस्ट होना ही था साहब। फिर चाहे वो तुमसा नहीं देखा हो या सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रूमाल हो या फिर दिल देखे देखो दिल देखे देखो दिल देखे देखो जी। वेल एक बार फिर से वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी नासिर साहब की कुछ और बेहतरीन फिल्मों की। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा, मुझे बहुत मजा आ रहा है इन गानों को सुनने में भी और ये कहानी सुनाने में भी। सिंगापुर आपको कैसा लग रहा है ये शो हमें जरूर बताइएगा हमारे फेसबुक पेज पर आकर। हमें इंतजार रहेगा।

0: Snacks and Crushable Premium Nuts at Velocity Novena Square, Kiosk Number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: क्रिशिवल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: डायरेक्टर राइटर नासिर हुसैन साहब स्पेशल शो में आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ। सिंगापुर, मेरा नाम है समर और आप सुन रहे हैं रेडियो मसी, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009। और आज हम लेजेंड्स फिर से में नासिर हुसैन साहब की बात कर रहे हैं। नासिर साहब की कामयाब फिल्मों का एक बड़ा हिस्सा पंचम दा का म्यूजिक भी था। 7 फिल्में इन्होंने साथ साथ की, सारी की सारी ब्लॉकबस्टर हिट, और म्यूजिक तो इतना कमाल कि जब आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा और आप वाह वाह वाह करते रहेंगे, करते चले जाएंगे। और वैसे भी पंचम दा की म्यूजिक की तारीफ करना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसी बात हो जाती है। तो पहली बार 1967 में पंचम दा ने इनके साथ काम किया था, फिल्म थी तीसरी मंजिल। ओ

शम्मी कपूर अब तक सुपरस्टार बन चुके थे, तो अब नासिर साहब ने कहा कि म्यूजिक पंचम देंगे एस डी बर्मन साहब के बेटे। तो पहले तो शम्मी कपूर बोले कि यार क्यों आप फिल्म को खराब करना चाहते हो हैं? लेकिन फिर जब पहला गाना जो पंचम ने रिकॉर्ड किया वो सुना उन्होंने, तो पंचम दा के वो फैन हो गए शम्मी कपूर साहब और उन्हें गले लगा लिया उन्होंने। इसके बाद पंचम दा के साथ नासिर साहब ने फिल्म बनाई यादों की बारात, इसके बाद हम किसी से कम नहीं, और ये फिल्म तो पूरी ही म्यूजिकल फिल्म थी। एक एक गाना इतना बड़ा हिट के पूछे ही मत, क्या हुआ तेरा वादा, इसके लिए रफी साहब को नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड दोनों अवार्ड मिले थे। क्या

इसके बाद फिर जमाने को दिखाना है, इस फिल्म का म्यूजिक भी जबरदस्त हिट था। और रही बात स्टार बनाने की, तो यहाँ उन्होंने आरडी बर्मन को स्टार बनाया, क्योंकि तीसरी मंजिल ही पंचमदा की पहली फिल्म थी और पहली फिल्म में कमाल करवा दिया नासिर हुसैन साहब ने। आज की आखिरी मुलाकात अभी बाकी है, लेकिन पहले सुनिए आप ये गाने और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद नासिर हुसैन साहब की बची हुई कहानी के साथ।

0: नाचने का मन है मेरा भी आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
2: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0।
3: इश्क सूफियाना,
2: इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
4: It's a Musti Partner event.
5: Amre Shamre Ek Pal Dar

रेडियो मंसी 24/7 लाइव बनाज की आखिरी मुलाकात में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ, और आज का शो हमने डेडिकेट किया राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर नासिर हुसैन साहब के नाम। बहुत सारी बातें हमने की, गाने सुने, किस्से सुने, और बहुत सी बातें अभी भी बाकी हैं, लेकिन वक्त उतना नहीं है मेरे पास कि मैं वो सब कुछ आपको सुना सकूं। लेकिन फिर एक मजेदार कसम मुझे याद आ रहा है, तो मैं वो जरूर आपसे शेयर करूंगा जाते जाते कि रणधीर कपूर साहब को तो आप जानते ही होंगे। रणधीर साहब राज कपूर साहब के बड़े बेटे हैं और करिश्मा और करीना के पापा। तो ये शुरू से मजाकिया रहे हैं और मजाक मजाक में कुछ भी कह देते। तो एक बार जब नासिर साहब के पास ये बैठे थे तो उन्होंने कहा कि नासिर साहब, आप फिल्में तो बड़ी कमाल की बनाते लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी क्यों होती है, इसमें आप बदलाव क्यों नहीं करते? तो नासिर साहब ने बड़ा मजेदार जवाब दिया उनको कि तुम कितनी बार मेरे घर आ चुके हो? कहने लगे बहुत बार। तो हर बार तुम बिरयानी ही क्यों मांगते हो, कोई और चीज क्यों नहीं मांगते? तो रणधीर बोले, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है भाभी जान के हाथों की। तो नासिर साहब बोले, मेरी फिल्मों के साथ भी ऐसा ही है, जब लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही है तो मैं दूसरी कहानी क्यों दूं? तो इस तरह के किस्से चलते रहते थे, मतलब हाजिर जवाब थे नासिर साहब। और आज के शो में जाने से पहले मैं नासिर साहब की एक फिल्म का जिक्र जरूर करूंगा, क्योंकि वो दो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी थी, और वो दो लोग हैं आमिर खान और उदित नारायण। नासिर साहब आमिर खान साहब के चचा लगते हैं, और अब तक यानी 1989 तक इन्होंने डायरेक्शन छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने लिखना नहीं छोड़ा था। और वैसे भी अब तक आमिर की कोई हिट फिल्म आई नहीं थी, तो इसे भी अच्छी फिल्म से लॉन्च करना था। तो नासिर साहब ने फिर फिल्म कयामत से कयामत तक लिखी, और ये इतनी बड़ी हिट रही उस साल, सिर्फ इसी फिल्म का नाम था। और साथ में आनंद मिलिंद का म्यूजिक और उदित नारायण के गाए हुए हर गाने इतने बड़े हिट हुए कि क्या कहें आपको। और उदित नारायण साहब की गाड़ी तो इसी गाने से चली थी।

लेकिन मेरी मंजिल यही है सिंगापुर में। बहुत जल्द लौटूंगा आपसे एक और मुलाकात के लिए। अभी दीजिए इजाजत, आज की कहानी यहीं तक। फिर एक मुलाकात से पहले कुछ वादे आपसे चाहता हूं कि आप कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद करें। और याद मुझे भी रखिएगा, मेरा नाम है समर, आपसे मिलता हूं यहीं पर। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
3: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
4: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows, another day, another time, for your listening pleasure only, because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
5: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.

0: सस्याकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: Your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
3: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
5: Check it out. Josh Mehra.
6: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
5: चेक इट आउट।

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
0: शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व्ड फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live pe.
2: Mere Karan Arjun aayenge.
0: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Par haan to sirf super hit back to back gaane aayenge. Masti Music Cafe.

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
3: नाचने का मन है मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: सलाम सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: All music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 September, 7 PM onwards, CSE Auditorium, Tessensen Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now 81382790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
2: It's a Masti partner event.
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे.
4: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे. पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुद्धा के साथ।
1: सच सच बताइए सिंगापुर, आपके फोन में कोई ऐसा ग्रुप है जो टेक्निकली डेड हो चुका है लेकिन डिलीट करने का मन नहीं करता है? कॉलेज ग्रुप, स्कूल गैंग, ओल्ड ऑफिस फ्रेंड्स, हॉस्टल वाले दोस्त, है ना? मैसेजेस महीनों से नहीं आए होंगे एक दूसरे के पास, लेकिन नाम देखते कहानियां ऑटोमेटिकली याद आ जाती हैं। फिर लगता है नहीं यार, ग्रुप तो डिलीट नहीं करेंगे। बस आज का मस्ती हैंगआउट वही बटन प्रेस करने वाला है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आपके साथ, एंड फ्राइडे एडिशन शुरू हो रहा है एक ऐसे गाने के साथ जो टाइटल आपको सुनाई देगा और सुनते ही आधा काम आपका खुद हो जाएगा। वो दिन भी क्या दिन थे। एग्जैक्टली। और अगर आप फ्राइडे को पहली बार हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन इन कर रहे हैं तो बस इतना समझ लो, हर फ्राइडे हम एक बॉलीवुड की फिल्म को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, उसके गाने, उसकी फीलिंग्स और उसकी उसकी बातें जो हैं लाइफ की बातों के साथ जोड़ते हैं और 3 घंटे तक अपने अंदाज में खुल के जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं। आज की फिल्म है छिछोरे, और ये चॉइस मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगी क्योंकि इस फिल्म में न सिर्फ कॉलेज की दोस्ती नहीं है, फेल होना, गिरना, उठना, लाइफ लेसन्स, स्ट्रॉन्ग वाले, अपने लोगों को पकड़ के चलना और लाइफ को थोड़ा कम सीरियस बना कर चलना, ये तो सिखाया गया है। जरूरी नहीं है कि हम रोज मिले तो ही दोस्त हों, और जरूरी नहीं है कि हम रोज ना मिले तो दोस्ती खत्म हो जाए। आगे बढ़ेंगे, बातें भी बढ़ेंगी, और फिर फर्स्ट आवर में हल्की सी नॉस्टैल्जिया फीलिंग के साथ हम बोलेंगे वो दिन भी क्या दिन थे।
2: वो दिन भी क्या दिन थे।
1: और हाँ, गाना सुन के अगर किसी पुराने दोस्त का नाम या कोई बात दिमाग में आ जाए तो मैसेज कर ही देना। आज तो फ्राइडे है बॉस, कल करेंगे वाली फीलिंग आज तो बिल्कुल मत लेके आना। स्टे ट्यून्ड।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: ओके सिंगापुर, ग्रुप ट्रिप प्लान करते वक्त सबसे बड़ा सवाल डेस्टिनेशन होता है या फिर पेमेंट? किसने किया, कितना किया, कौन सा किया, कब किया, ये होता है। फ्राइडे है, छिछोरे का मूड है, वो दिन भी क्या दिन थे इज द सॉन्ग जो कि हमने इस फर्स्ट आवर के लिए सेलेक्ट किया है। तो दोस्ती तो ऑटोमेटिकली याद आ ही जाती है ना। और फिर एक सर्वे अचानक से मेरे सामने आ जाता है जो एक्चुअल में फ्रेंडशिप का असली प्रैक्टिकल टेस्ट दिखा देता है। सिंगापुर में एक में से तीन जो है 1 in 3 पीपल ने ग्रुप ट्रिप के बाद एक्सपेंसेस को लेके आर्ग्यूमेंट को फेस किया है और ये एक रिसर्च आर्टिकल है। 21% ने तो ये कह दिया कि सेम ग्रुप के साथ दोबारा वो ट्रैवल ही नहीं करेंगे। सबसे कॉमन प्रॉब्लम पता है क्या? लेट पेमेंट, गलत कैलकुलेशन और द क्लासिक लाइन, मैंने इतना क्यों देना है, मैंने तो वो ऑर्डर ही नहीं किया था, मैं तो वहां गया ही नहीं था, मैंने तो ये ट्रिप ही नहीं ली थी। ओ माय गॉड, द क्लासिक वन। और अगर ग्रुप बड़ा है तो ड्रामा अपग्रेड हो जाता है। 6 या उससे ज्यादा लोगों के ग्रुप में ना मनी फाइट्स का चांस और भी ज्यादा होता है। जो बेचारा सबके बिल्स अप फ्रंट पे करता है ना, ट्रिप का अनऑफिशियल अकाउंटेंट वही हो जाता है। उसकी तो हॉलीडे की ऐसी बैंड बजती है कि बात ही छोड़ दो, हॉलीडे के बाद भी उसकी ड्यूटी खत्म नहीं होती। वो तो लोगों को एक्सपेंसेस सेटल करने में ही लगे रहता है। मतलब उसको एक से ज्यादा दिन तो अपने को तो क्या ही करेगा वो रीम मैम, वो बिलिंग ही सेटल करता रहता है। बताओ जरा, फुल छिछोरे कनेक्शन है। कॉलेज में दोस्ती थी, तू दे दे मैं दे दूं, मैं दे दूं तो दे बाद में दे दूंगा, और अडल्ट लाइफ में आते ही स्प्रेडशीट खुल जाती है एक्सेल की। सुनो ये मैंने, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, ये कैलकुलेशन हो जाती है। और 88% लोग जो है ग्रुप ट्रैवल में अपना बजट क्रॉस भी कर देते हैं। रीजन, लिविंग इन द मोमेंट।

0: तो बेसिकली फ्राइडे का थॉट सिंपल है, दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान जरूर करो, मेमोरीज स्प्लिट मत करो, बिल तो स्प्लिट होना ही चाहिए, गए तो सारे साथ ही है ना। बस ये हैंग आउट पर आप सुन रहे हैं मुग्धा को, स्टे कनेक्टेड।
1: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेले है। जोश में रहो।
2: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया। जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया। अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
3: मस्ती पार्टनर इवेंट।

0: केमिकल फ्री हलाल सर्टिफाइड, मतलब गिफ्टिंग के लिए स्मार्ट अमेजिंग ऑप्शन एंड ऑफ कोर्स खुद के लिए भी। और पता है मुझे इसमें फ्राइडे वाली बात क्या लगती है, वीक भर हम सब डिसिप्लिन रहने की एक्टिंग करते हैं, फ्राइडे आते ही कुछ क्रंची सामने रखो और कच कच कच कच कच है ना, कौन सबसे पहले खाएगा, बिल भले कोई नहीं देगा। सो फ्रेंड्स के साथ मूवी नाइट करने जा रहे हो, फैमिली के साथ फेस्टिव गिफ्टिंग करनी है, या फिर ऑफिस डेस्क का मंचिंग ड्रॉअर एवे भर के रखना है, स्टॉक होना चाहिए। The place is Velocity at Novena Kiosk number 12. Mid autumn sale का मजा उठाइए, जाइए और ड्रॉअर भर के खाना लेकर के आइए। This is me मुग्धा, आप सुन रहे हैं मस्ती हैंग आउट। I'll be right back, stay connected.
1: सारे सुनो सुनो, स्टार्ट होने लगा।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bhaiyon aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं. Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: आजी क्या चाल, फ्राइडे का प्लान बना लिया? नाइस, अब बेटा को जरा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करो। टिंग टिंग टिंग नोटिफिकेशन, सीरियसली सिंगापुर का सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर थोड़ा ऐसा लग रहा है जो मतलब जैसे ग्रुप में कोई एक ऐसा दोस्त होता है जो कभी आई एम इन बोलता है, कभी गाइस मे बी नॉट, कभी यार मैं तो नहीं आ रहा, यार पता नहीं ऐसा। लेट मॉर्निंग से आफ्टरनून के बीच में थंडरी शावर्स आ सकते हैं, कुछ दिन बहुत हैवी रेनफॉल हो सकता है, टेम्परेचर वार्निंग्स भी हैं अराउंड 33 से 34, कभी कभी 35 भी जा सकती है। मतलब ग्रुप चैट जैसा है और ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड वन इज लाइक ब्रंच, फ्रेंड टू डन, वेदर सेम, और फिर 20 मिनट के बाद थंडर स्टॉर्म के साथ आपके सामने वेलकम हो जाएगा। छिछोरे वाली दोस्ती याद आ जाती है। प्लान वेदर देख के कैंसिल नहीं होते, वैसे तो आपको बता दूं। बारिश आ गई है तो कोई बात नहीं, और मस्त प्लान बन जाएगा। अब हम थोड़ा ड्रिजल देख करके कह देते हैं कि यार प्लान को आगे बढ़ा दो, नहीं मैं तो बारिश देख के कहती हूँ अब चले, वही तो मजा है। अम्ब्रेला बैग में रखो, बैकअप इंडोर प्लान का रखो और निकल जाओ, होगी तो देखा जाएगा, यार कार तो है ना अपने पास। फ्राइडे का मूड परफेक्ट वेदर का वेट करते करते वेस्ट मत करो, क्योंकि ये फ्राइडे

0: रखा हूँ।
1: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर शो के सेकंड आर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल पूछती हूँ आपसे, जीतना इम्पोर्टेंट है या बार बार वापस आकर जीतना? ये जो पूरा आर है ना, दिस विल बी डेडिकेटेड टू द मूवी छछोरे इन टोटालिटी। अच्छा क्या है ना कि एमी अवार्ड्स हुए 2026 एंड जीन स्मार्ट ने हैक्स के लिए फिर से लीड एक्ट्रेस इन अ कॉमेडी सीरीज जीत लिया है और अब उनके पास टोटल 8 एक्टिंग एमी विंस हैं। कईयों के रिकॉर्ड के बराबरी वो कर चुकी हैं और हैक्स के लिए हर सीजन के लिए लीड एक्ट्रेस का जो ऑनर जीतना, दैट्स द फर्स्ट वन फॉर हर। अब मुझे ना ये कहानी छछोरे के मूड के साथ इसलिए मैच करती हुई लग रही है क्योंकि फिल्म में भी जो है वो एक ही बात कही गई है, रिजल्ट तो देखो एक दिन का होता है, कंसिस्टेंसी तो सालों की होती है। हम ऑफ्टन विनर को ट्रॉफी के मोमेंट्स में देखते हैं, ट्रॉफी लेकर जीत देखते हैं, उसको चेयर करते हुए देखते हैं, पर उसके पीछे कितने ऑडिशंस हुए, कितने बैड डेज हुए, कितनी बार सुना होगा उसने कि दिस टाइम, और ये हम सबके साथ होता है, वो फ्रेम में कभी नहीं दिखता, किसी को भी नहीं दिखता। फ्राइडे को मुझे ये थॉट बहुत अच्छा लगा, वीक परफेक्ट गया हो या फिर उसके टोटल उल्टा, एक खराब हफ्ता आपको लूजर नहीं बनाता यार, पूरा आने वाला वीकेंड क्यों खराब करें उसके लिए, जस्ट रीस्टार्ट इज नीडेड, है कि नहीं? सो आर टू में बात होगी द मूवी छछोरे की। इट्स ऑल अबाउट दोस्ती एंड कॉम्पिटिशन, फेलियर, कम्बैट, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन लाइफ, प्रेशर जो कभी कभी हम जाने अनजाने खुद पे खुद ही डाल देते हैं। सुन रहे आप मुग्धा को, स्टे ट्यून, आई विल बी राइट बैक।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक, जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique, showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय एवरीबॉडी, दिस इज मी मुग्धा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आपने नोटिस किया है कुछ शोज में आर्टिस्ट जो है वो स्टेज पे परफॉर्म करते रहते हैं, ऑडियंस बस चुपचाप बैठ के देख रही होती है, ताली वाली बजा देती है। कुछ इवनिंग्स तो ऐसी होती है ना जहाँ पे ऑडियंस जो है वो बस ऐसे बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं। हाँ ठीक है, इट्स ओके। पर अभी मैं जिसकी बात करने वाली हूँ दैट्स लाइक नो, यहाँ पे ऑडियंस खुद शो का हिस्सा बनेगी। एंड दिस इज द बैक स्टेज सिबलिंग, यही तो है इनका चार्म। प्राची एंड राघव आ रहे हैं ऑन 26th of September शाम 6 बजे एंगेज थिएटर 2 सन टेक्निक। वो एक ऐसी भजन बैठक लेकर के आ रहे हैं, वो जो भी ये हो रहा है इट्स अमेजिंग। पता है आपको, आपने शायद इसके बारे में पहले सुना होगा, इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक ने इसके बारे में बात की है। बिकॉज जिस तरह से ये जनरेशन को जोड़ते हैं ना, साथ में गाते हैं, क्लैपिंग एंड रिस्पॉन्ड करना, वाइब बनाना, दैट इज अमेजिंग। तो अगर कोई ऐसा इंसान इनके बारे में बात कर रहा है, इनका जिक्र कर रहा है, तो आई एम श्योर कि ये कोई आम भजन बैठक तो नहीं हो सकती। मुझे इनका एक थॉट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, द स्टेज इज द ऑडियंस। मतलब एक पॉइंट के बाद ना ये फील ही नहीं होता है कि परफॉर्मर अलग है और क्राउड अलग है। भजन होंगे, सूफी फ्लेवर्स, नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स, और सबसे अच्छी बात पता है क्या, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सब तरह के लोग जा सकते हैं। यू ऑल विल एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। टिकट्स एक्सक्लूसिवली मिलेंगे सिस्टिक पर, दे आर अवेलेबल। एंड फॉर मोर डिटेल्स आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9866-7144। लेकिन अगर आप टिकट्स यहाँ जीतना चाहते हैं तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आप मुझे बताएंगे कि बैकस्टेज सिबलिंग में प्राची और राघव क्या है, म्यूजिकल आर्टिस्ट, स्टैंड अप कॉमेडियन।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: daily, me daily, me daily, me daily, me daily.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: Healthy खाओ, protein खाओ, healthy खाओ, protein खाओ.
5: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
4: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
5: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
6: जीजी
5: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे wholesome healthy options.
6: GG Mart, your personal grocer.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Hi everybody, welcome back. Friday को आपने अगर मुझे अभी ज्वाइन किया है, but you're too late. आज तो वाकई में बहुत देर हो गई। पर पता है क्या, फ्राइडे की एक बात मुझे लगता है हम सब उस पे अग्री करेंगे, अच्छी चीज, एक अच्छी बात है, वीक भर जो अंडर एस्टिमेट हुआ हो ना, उसका कमबैक देखने में एक अलग ही मजा आता है। एंड दैट्स द फ्राइडे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से एक प्रॉपर कमबैक टू अ ग्लोबल स्टेज वाली जो कहानी है वो आ रही है। We all know Vijay Sethupathi, and I'm sure आप में से कईयों ने उनकी महाराजा देखी होगी, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। A very unusual story, performances, twist, oh my God, बहुत discussion हुआ था, पर असली discussion तो अब होगा। Hollywood इसका remake बना रही है। जी, Bollywood, in fact not Bollywood, Tollywood से Hollywood तक की कहानी। Reports में Matthew McConaughey का नाम जो है वो lead role के लिए आ रहा है, और interestingly हिंदी रीमेक को लेकर आमिर खान का नाम भी काफी लिंक हुआ था। अब इसका पता है छिछोरे कनेक्शन क्या है? फिल्म में भी एक पॉइंट ये था, लोग बहुत जल्दी ना लेबल लगा देते हैं, विनर, लूजर, हिट, फ्लॉप, सक्सेसफुल, एवरेज। स्टोरी कभी कभी बाद में पलटती है, और वो जब पलटती है तो भाई साहब क्या ही पलटती है। महाराजा का केस भी थोड़ा वैसा ही है। एक रीजनल फिल्म निकली है, ऑडियंस ने पकड़ा उसको, फिर वर्ड ऑफ माउथ से बॉर्डर्स क्रॉस होते होते अब वो सीधा हॉलीवुड में पहुंच गई है। माय फ्राइडे टेक कभी कभी स्मॉल सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सीलिंग नहीं होता है। एंड फ्रैंकली हम इंडियंस को एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हॉलीवुड को भी कभी कभी बोलना पड़ता भाई ये आइडिया इधर भेजो, ये अपुन इधर लेगा, इसको कॉपी करेगा। सुनते रहिए मस्ती हैंगआउट, मैं हूं मुग्धा आपके साथ।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: फ्राइडे है और हर फ्राइडे लाउड हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप समझ गए होंगे जब लाउड नहीं है तो क्या है, समथिंग दैट इज सोलफुल। कई बार हफ्ता इतना ज्यादा बोल चुका होता है, पूरा हफ्ता इतना बोल चुका होता है आपके सर के ऊपर कि वीकेंड पे बस कुछ ऐसा सुनने का मन करता है जो अंदर से आपको सुकून दे जाए और आपके अंदर का वॉल्यूम कम कर दे, है ना। अब ये मूड आपको कौन देगा? परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स जो की लेकर आ रहे हैं इश्क सूफियाना बाय अमित धमेरिया, अ सोलफुल लिविंग बींग। और फोकस कहाँ होगा? सूफी फ्लेवर्स, लाइव म्यूजिक, आवाज के उस एहसास पे जो सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं चलता है, बस रुक कर सुनना पड़ता है और सुनने पर मजबूर करता है। दिस इज हैपनिंग ऑन सैटरडे 26th ऑफ सितंबर शाम 7 से लेकर रात के 9 बजे तक एट ऑडिटोरियम सिविल सर्विस क्लब टेसनसन 60 जी। और पता है मुझे ना छिछोरे के बीच में ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही फिट लगता है, क्योंकि फिल्म जो है बार बार ये याद दिलाती रहती है कि लाइफ सिर्फ रेस, दौड़ना, रिजल्ट, नॉइज इसका नाम नहीं है। कभी कभी पॉज देना बहुत जरूरी है और सूफी म्यूजिक का अपना ही तरीका होता है। बिना कोई लेक्चर दिए थोड़ा पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाता है। टिकट्स आर 60 and 80 डॉलर्स। बुकिंग के लिए आप पे नाउ कर सकते हैं, नंबर है 8138 2790। तो परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स जो कि इश्क सूफियाना लेकर के आ रहे हैं, इसको जरूर एंजॉय करिए।
2: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Hi everybody, this is me Mugdha और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Masti 24/7 Live और it's Friday, the weekend vibe is on। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है मैं फिर वही कहूंगी buddy, you're late today। जी, क्योंकि हम शो के लास्ट आवर में आ चुके भाई। This is the third hour of Friday और अब मूड थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। प्लान कम, ब्रीदिंग ज्यादा। हैव यू एवर नोटिस्ड हम लाइफ को इतना प्लान करते हैं जैसे कोई एक्सेल शीट बना रहे हो बैठ के। मतलब इस एज तक ये करना है, इतने साल में ये अचीव हो जाना चाहिए, वीकेंड में ये होना है, और उसके बाद लाइफ कहती हेलो हेलो क्यूटी, अब मेरी सुनो। मिनेसोटा में साइंटिस्ट ने प्लांट्स को, ट्रीज को ऑफिशियली वार्म करके प्रेडिक्ट किया था कि उनकी जो रेस्पिरेशन है अराउंड 23% तक बढ़ जाएगी। एक्सपेरिमेंट पता है कितना लंबा चला? 2009 से लेके 2011 तक चला। ट्रीज को अप टू 3.4 डिग्री सेल्सियस जो है वार्मर कंडीशंस में रखा गया, बट एक्चुअली इंक्रीज सिर्फ अराउंड 5% ही निकला, जो कि उनके उम्मीद से बहुत बहुत बहुत कम था। मतलब नेचर ने बेसिकली क्या कहना चाहा, आप कैलकुलेशन करते रहो, एडजस्टमेंट तो मेरा अपने हिसाब से चलेगा। एंड दिस इज वेयर छिछोरे का एक गाना है फिकर नॉट, फिट्स एब्सोल्युटली परफेक्टली। जी, हम रिजल्ट पहले डिसाइड कर लेते हैं दिमाग में, अपने एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं, एक्सेल शीट बना लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर जब लाइफ अपनी स्क्रिप्ट लिखती है एक्सेल शीट का कैलकुलेशन भी गड़बड़ हो जाता है। फ्राइडे का लेसन इज वेरी सिंपल, हर चीज कंट्रोल नहीं हो सकती है और कभी कभी सरप्राइज डिजास्टर भी हो सकता है। प्लान फेल हो सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते हैं। नेचर के साथ प्लान मत करो, वो एडजस्ट करेगी अपने हिसाब से, वहां पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो बॉस, फिकर थोड़ी कम, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा व्हेन इट्स अबाउट योर लाइफ एंड नेचर।
2: ओ चिंता करके क्या पाएगा, मरने से पहले मर जाएगा।
1: This is me Mugdha, Figure Not, the song for you.
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 PM onwards, CSE Auditorium, Tessensohn Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now 81382790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
1: It's a Masti Partner event.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुद्धा के साथ।
1: फ्राइडे है, फिकर नॉट का मूड है, तो क्या होगा? कल के टेंशन में आज का मजा मत छोड़ो। दैट्स ऑल अबाउट द सॉन्ग। सच बताइए, जो ये वीकेंड है ना, उसके आते हम क्या करते हैं? प्लान्स बनाते हैं, फिर वेदर देखते हैं, फिर ट्रैफिक का सोचते हैं, बजट सोचते हैं, फिर टाइमिंग, और कभी कभी आउटिंग होने से पहले इतना थक जाते हैं सोच सोच के, लगता है छोड़ कौन जाए, घर पे रह जाते हैं। तो इस बार कीप इट सिंपल सिली, संडे 27 सितंबर फैमिली और फ्रेंड्स को पकड़ो और निकल जाओ। अरे सुनो तो कहाँ जाना है? फेस्टिव बाजार, नारपानी, माउंट बैटन, CCIAEC। बिकॉज ये लेके आ रहे हैं फुल डे फेस्टिव सीन एट माउंट बैटन CC मल्टीपर्पज हॉल, सुबह 10 से लेके शाम के 6 बजे तक। फैशन, अपैरल, फूड, स्नैक्स, होम डेकोर, गिफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट सब है यहाँ पे। और बच्चों के लिए, ओ माय गॉड, बाउंसी कैसल, जॉय राइड, लकी ड्रॉ प्राइजेस, एंड जो वहाँ के रेजिडेंट्स है ना, वो लाइव परफॉर्मेंसेस भी देंगे। सो फुल डे फन है। और हाँ, सेलर साइड का रिस्पॉन्स ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग आ चुका है। बच्चे होंगे जल्दी, अगर आप किसी को बुक करना है तो कर लो, मतलब वैरायटी इज ऑल रेडी, अब बस क्राउड चाहिए, क्योंकि इतनी वैरायटी है तो क्राउड का जाना तो बनता है। माय फ्राइडे गिग। वीकेंड का हर प्लान प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं है, कभी कभी बस घूमो फिरो, खाओ ऐश करो यार, और क्या। दिस होल इवेंट इज सपोर्टेड बाय पीपल्स एसोसिएशन। यस, 27th ऑफ सितंबर, फिकर नॉट, बाजार स्पॉट।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय एवरीबॉडी, बहुत लेट हो गया आपको, ये बात नहीं है, आज वीकेंड है, कुछ नहीं कहूंगी। पर फ्राइडे की एक चीज ना पक्की होती है, दिमाग को थोड़ा छुट्टी चाहिए होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दिमाग खुद छुट्टी पे जाता ही नहीं कभी, और हम उसको छुट्टी पर भेज नहीं सकते। कभी ऑफिस के बारे में, कभी वीकेंड की प्लानिंग, कभी किसी का मैसेज, कभी वो एक रैंडम ओवर थिंकिंग जो पता नहीं हमने बुलाई तो थी नहीं, पता नहीं कहां से आ गई। बिन बुलाए मेहमान, अतिथि देवो भव, क्या कर सकते हैं। सोचो ऐसे दिमाग को कोई स्टेज पे बैठ के अगर वहां से रीड करने लग जाए तो मैं तो कभी नहीं जाऊं डर के मारे, मैं पता नहीं क्या ही सोच रही हूँ उस समय। वेल, वंडर सोल एस्केपेड्स और एपिक एनकाउंटर्स प्रेजेंट कर रहे हैं सुहानी शाह, स्पेलबाउंड, अ मेंटलिज्म एक्सपीरियंस जो कि हो रहा है लाइव इन सिंगापुर। द शो इज हैपनिंग ऑन संडे 20 सितंबर शाम 6 बजे एट क्रेटा आयर पीपल्स थिएटर, 38 क्रेटा आयर रोड। शो इंग्लिश में होस्ट हो रहा है, इट्स गोना बी इजी। आप एक्सपेक्ट करिए माइंड रीडिंग, मेंटलिज्म एंड वो इम्पॉसिबल मोमेंट्स जहां पे आपको लगेगा नहीं, ये नहीं हो सकता, कैसे पता इसको। फिकर नॉट, मूड भी तो वही है ना, हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है बेबी, कभी कभी बस सिट बैक, रिलैक्स, एंजॉय, और आपके दिमाग को किसी और को कंफ्यूज करने दो। यस, कोई तो सोचे आपके दिमाग के बारे में क्या चल रहा है उधर। टिकट्स आर अवेलेबल एज सिस्टिक, पर आपके पास मौका है एक सवाल का जवाब देके शो का टिकट जीत सकते हैं आप। सो द क्वेश्चन इज, सुहानी शाह का शो स्पेल बाउंड सिंगापुर में किस डेट पे हो रहा है? ऑप्शन ए 20 सितंबर यानी कि 20 सितंबर, ऑप्शन बी 27 सितंबर।
2: मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आंखों में।
1: सही जवाब भेजिए 9151893 पर।
3: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ
1: और सिंगापुर। बस आज का फ्राइडे मस्ती हैंगआउट तो यही पर आप हो रहा है। वाओ सीरियसली बहुत जल्दी शो खत्म हो गया ना। छिछोरे ने काफी सारी बातें याद दिलाई पर एक बहुत ही सिंपल बात याद दिलाई, लाइफ को हर वक्त ना स्कोरबोर्ड पे मत रखो। कभी ओल्ड फ्रेंड्स याद आ जाते हैं, कभी प्लान्स उल्टे हो जाते हैं, कभी रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं होते और वो आते हैं, और कभी जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं आता। एंड समटाइम्स बस फिकर नॉट यही बोलना इज द बेस्ट रिस्पॉन्स। गाने हो चाहे पिक्चर हो, हर चीज छिछोरे की हमें कुछ ना कुछ तो सिखाई जाती है। वो दिन भी क्या दिन थे, ब्रिंग्स ऑल दैट नॉस्टैल्जिया बैक, है ना। वो पूरा गेट खुल जाता है, ओल्ड गैंग्स, ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स, है ना। उसके बाद छिछोरे इटसेल्फ वो आपको थोड़ा सक्सेस, फेलियर, कमबैक, लेबल्स, एक्सपेक्टेशंस, इन सब से बाहर निकलने को कहती है। एंड द लास्ट क्या था, सिंपल रिमाइंडर है द लास्ट सॉन्ग ऑफ द शो। जो होगा देखा जाएगा, पहले वीकेंड को तो जी लो। सच बताऊं फ्राइडे का काम हर प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं होता है, जी नहीं होता है ये। कभी कभी बस दिमाग का वॉल्यूम थोड़ा लो कर लो। तो जहां पे भी हो, कम्यूट में, डिनर प्लान पे, फ्रेंड्स के साथ घर जा रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, वीकेंड को थोड़ा स्पेस दो सरप्राइज करने का। मैं मुग्धा, आप सुन रहे थे मस्ती हैंगआउट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। फिकर थोड़ी कम करो, हंसी थोड़ी ज्यादा, और वीकेंड को मार्क्स मत दो। टाटा बाय बाय, मिलेंगे अब मंडे को।

0: इस वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वॉज अ गर्ल, इस वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just make-

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: The perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti 24/7 Live.

Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: नाचने का मन है।
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Musti 24/7 Live. Have a musti bhara weekend.

0: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: She likes to drop it low, man.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: रात अकेली है
5: तो क्या, हम तो आपके

0: अकेली है।
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
2: जोश में रहो।
3: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
0: रात अकेली है।
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, खुद से जुड़ा।

कोकला ची पाकी जुमे रात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकला ची पाकी जुमे रात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकला ची पाकी जुमे रात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी।

0: बात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: ए ऊ आ ए ऊ आ

0: not the system, but it's love for money.
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल,
2: आज फिर तुम पे।
0: इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
3: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
7: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into a Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 PM onwards, CSE Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now 8138-2790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
1: It's a Masti Partner event.
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a Masti Bhara weekend.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh May.

0: दस का बीस।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a Masti Bhara weekend.

वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

भी अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते, ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।